0: Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favorite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations, and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, सबसे सोना सड़ा सोना।
2: वसीम ज्वेलर्स।
0: Mira's Bar and Pure Vegetarian Restaurant. Mira's, for family and friends in that perfect ambiance, with mouth-watering Indo-Chinese, South Indian and clay oven a la carte dishes. Mira's Royal Thali will have you licking your fingers. Open 6 days.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 2008 की फिल्म जोधा अकबर का ये गाना, अ फिल्म स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, ए आर रहमान, सोनू निगम, मधुश्री ऑन द वोकल्स, इन लम्हों के दामन में। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह, 3 सितंबर की सुबह, शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस, ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
0: अ हाउस फुल ऑफ केओस, अ गर्ल फुल ऑफ ड्रीम्स, वॉच अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ लव, फैमिली एंड इमोशंस। वॉच बरेली की बच्चन मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Continuing with A.R. Rahman, मैं वापस आऊंगा। विपिन अनेजा, A.R. Rahman की आवाज तेरे पास में। नीलम आप कहती हैं ब्यूटीफुल लिरिक्स इंडीड। इफ यू रीड जावेद अख्तर्स बायोपिक और जावेद अख्तर्स कॉन्वर्सेशन विद नसरीन मुन्नी कबीर इन दैट बुक टाइटल्ड टॉकिंग लाइफ, जावेद साहब कहते हैं कि एक अच्छा लिरिक्स लिखने वाला वो है जो हर लम्हे की नजाकत को समझे और फिर अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज करे सो दैट यू आर एबल टू कन्वे एन इमोशन इन द सॉन्ग विद इन द सॉन्ग and set the story for the audience. Indeed. Yeah.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: hauntingly beautiful. आतिफ असलम, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो. मिस्टर खान, आई हैव जस्ट सीन योर शॉर्ट एंड स्वीट शेयर फॉर दिस मॉर्निंग. आप कहते हैं, तुम्हें देखकर ठहर जाए लम्हा भी. अर्ज किया है, तुम्हें देखकर ठहर जाए लम्हा भी, फिर मेरी जान ये निगाह क्या चीज है. ब्यूटिफुल. Sorry, Nirmal ji, in Hyvik, I'm Praveen in Crowley, Saira in Cheltenham, Ulash, all the way in Toronto. So many red hearts for this song. Sunrise Radio par is ghante ka listener's choice, of course.
1: Listener's choice brought to you by Colors TV.
2: Bye bye ke pyar, kitna sundar ba bihar, ek chuneri rang biranga.
3: Watch Bhojpuri Bawal every Monday to Sunday at 10 p.m. on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
0: Jasmine in Hayes, Pandit Kaushik Joshi in Peterborough. Vijay ji, how are you this morning? Chirag in Blackpool, thank you very much.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: ਅਮਰ ਜਲਾਲ ਜਹਾਨੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਜੈਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੈਦਾ ਨਸ਼ਾ ਯਾ ਵੈਲ ਡਨ ਰਾਜੀਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ Right, the votes are in. Lots and lots of you voting. And I'm very, very surprised. Because only two people went for Alu Chat. So obviously, which one is it? It is. Lal Tamatar. Kanika Kapoor, Asneya Khanawalkar. I think that's how you pronounce it. Khanawalkar.
1: साठ की उम्र में भी हॉट है ये हाय फिर से जवानी वाली याद दिलाए साठ की उम्र में भी हॉट है ये हाय फिर से जवानी वाली याद दिलाए केचप केचप सा चटक है मेरा लाल टमाटर केचप केचप सा चटक है मेरा लाल टमाटर केचप केचप

0: Weekdays with Shabnam Sahi.
1: That is what makes you a superstar.
0: Weekends with Amit Channa.
2: That is my opinion. Whether you agree or not, it's totally up to you.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा